प्रभु चरा हर की आत्मा। श्री दीप नारायण भगवान शिवानंद जी महाराज की, अलकपुरी जी महादेव, देवादिदेव देवेश्वर महादेव की।

मेरे तो आंखें पट्टी बांध दी, लेकिन कबूतर तो देख रहा है कि मैं उसको मार रहा हूं, कि उसकी भी पट्टी बांध दे। गए वापस, जाकर गया वापस आ गया कि गुरुदेव मेरे आंख की पट्टी बांध दी, कबूतर की आंख की पट्टी बांध दी, लेकिन भगवान तो देख रहा है, भगवान की आंख मैं कैसे बांधू। तब कहा तू पक्का चेला है बेटा, तुम्हारे को मंत्र दीक्षा देंगे। और उसको कहा ला इधर कबूतर को, उसको गुरुजी जिंदा करके उड़ा दिया। तो उसी प्रकार दैट इज ए स्टोरी अबाउट अ पिजन एंड यू नो ऑल। तो फर्स्ट दैट गॉड नोज व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू वांट, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट यू वांट टू डू इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और दूसरा इस हॉल के अंदर में जो है वो जानता है, और वो ये है आप खुद जानते हो। तो भगवान जानता है और आप जानते हो, ये दोनों ही जो है इसी हॉल के अंदर में, इसी आश्रम के अंदर में जो बैठा है वो कर रहा है। तो उसी प्रकार जब मनुष्य का व्हेन द ह्यूमन सॉल इंटर्स इनटू द ह्यूमन बॉडी, गॉड गिव्स अस द फ्रीडम, बट then it is like that you will be bounded to the karma, and that karma what we call the action, where the action it will be reaction, or where the reaction there will be the action. Good reaction is good action, good action is good reaction, bad action good and bad, पाप एंड पुण्य केवल मनुष्य के साथ में होता है। जब मनुष्य द ह्यूमन इफ दे डू नॉट फॉलो द प्रिंसिपल्स, देन द ऋषि मुनीस दे गेव दिस रूल्स, पूर्णिमा, ग्यारस, अमावस्या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऑल दिस डेज is called the holy, and on this day you should not do. And so in India, in our culture, ancient cultures, now they are different. In this Kali Yuga, there are more different religions, and every religions they have made themselves. So there is a call man-made God, man-made religion, and God-made religions. The God-made principles and man-made this. Man-made world is not perfect, but God-made world is a perfect. Therefore, in these principles, a human day and night, by each and every step, by each and every look, we should know what I am doing, what I am thinking, so that I will be perfect, I will pass as a human. Then this soul will go to the Brahmaloka, otherwise somewhere, jitna karam hai, us karam ke aadhar par, phir hum aayenge. So this city Jaipur is a very spiritual city. On day after tomorrow's or 14th, you all Europeans are here, I think you should go and see the festival of the Shravantis in Jaipur. Hota hai ki nahi? कब है वो? कब है? तारीख कौन सी तारीख है? 13 तारीख को है क्या? 14 को?
नहीं वो तो एकम दूज भेड़ी हो गई ना 13 तारीख को एंड सोमवार. आई थिंक दिस पीपल शुड स्टे हियर. देयर ऑल रोड्स आर ब्लॉक्ड एंड यू गो टू सी दैट फेस्टिवल ऑफ दिस डे. इट कम्स वंस ए ईयर. दिस फेस्टिवल इट इज ए फेस्टिवल ऑफ द डिवाइन पार्वती एंड शिवा. यस सो यू शुड आई थिंक डोंट मिस दिस. इट विल बी वेरी नाइस. देयर मेनी फॉरेनर्स आर देयर. मेनी पीपल आर देयर. इट्स ए ब्यूटिफुल फेस्टिवल. ब्यूटिफुल. सो डोंट मिस दिस. परहैप्स समवन ऑफ वी हैव हियर गाइड. We will ask the guide that he can bring you there as a tourist. And something, I think you should do it. In the morning till the noon. Itna hai na? Dupair mein. Aha. From 3 to 5 afternoon, and then you should come to the Kailash. Well, I am not talking about my birth. But somehow it happens. It is coincident. So this is the day of my birthday. Exactly on that time, so I was also born on Shravan ki Tees. And that day is a special thing they have. So people are trying to bring me this, they did not know. But that is a different thing for children to eat. But each and every event which is according to the spirituality, the culture, tradition, and environment, and the what we call the for the environment, the culture of trees, what we call वृक्ष लगाते क्या कहते न वृक्षारोपण तो है. हरिओम हरिओम हाउ आर यू. ठीक हो. टुडे इज माई बर्थडे. तो जा कहाँ रहे हो इतना जल्दी. मोमेंट मोमेंट कुछ लेके जाओ. कुछ लेके जाओ. ये लो. ये कि वो कहाँ है. बेस्ट वन. ओके दिस इज द बेस्ट वन. तो इतनी जल्दी में क्यों. So it is like this, that I think by the rishis and to protect the humans' action towards spiritualities and not go towards the negativities. Now negativities come now too much. Meat, alcohol. But in this pure festivals, there's a very pure, that's very, very good. So today is the day of this. Someone said that my birthday. What birth is every day. I wish you all the best. Thank you, everyone.

श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देव पुरुषा महादेव की जय। सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। ब्लेसेड सेल्फ, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हियर इन दिस हॉल इन आवर ब्यूटिफुल आश्रम एंड ऑल डियर वंस राउंड द वर्ल्ड, वेलकम। फॉर सम वन ऑफ यू इज गुड मॉर्निंग एंड फॉर सम वन इज गुड इवनिंग एंड सम वन हैव लंच। सो बेस्ट इज टू से हरि ओम, वेलकम। टुडे विल बी द मेडिटेशन ऑन चक्रास एज अ ग्लिम्स ऑफ द चक्रास। वी ऑलवेज स्पीक अबाउट चक्रास एंड बॉडी इन डिटेल। If you would like to know more in detail, then of course you should read this, our chakra book, Hidden Powers in Humans. But I will tell only the glimpse of it. Our consciousness or our self, the Atma,

देवपुरी स महादेव की, दीप नारायण भगवान की जय, माधव कृष्ण भगवान की जय। हरिओम।

of from the same father, but the mother is different. That's why it is saying that whatever you breastfeed, according to the breast, you will have the brain. So that's why the milk, whatever they drink. And Donu was one of the nice lady, but she always wants some arrogant and violent, strong sons. According to her wish, and Danava came. So, and Diti was silent, calm, cool, utterly respected. And she always wanted the nice sons, like God. And she got the God. So that's why the whatever you wish also, that works great. What sort of children, what sort of generation you want to make. That's in your mind. That's why don't blame only your kids. Oh, you are silly. So there is some, your contribution also goes. Credit also goes. That's why it is saying that. So Danu have got a lot of demons and Viprachit. And from Viprachit, Damba came. So Damba. Viprachit went to meditation and he did not have son and the Brahma gave blessings. And similarly, Damba also went to meditate. And when he meditated, then he find out the Shankhachur. And Shankhachur is one of the popular demons and he has got the great story, and because of him that the whole world was terrifying. His name is Shankhachur, and Shankhachur is one of the popular demons. So it's very hard to remember, isn't it? Brahma and Marichi and Kashyap and Diti Danu, and after that Viprachit and Damba, and after Damba Shankhachur. And this story about the Shankhachur. So you might easily remember, isn't it? So us samay mein kya tha ki jab Brahma ji ne srishti kiya tha to sabse pehle is sansar ko shuruaat karne ke liye shuruaat se hi ye katha vachan hota hai Shiv Puran ka, ye Rudra Samhita ka katha aap kahin bhi hai shravan kijiye ki isme ananya gyan hai, ananya bhakti hai, to humko kahin bhi जो पढ़ने को तो मिलेगा, लेकिन ये अमृत वाणी आपको सिर्फ कान को शुद्ध नहीं करेगा, शरीर और कर्म को समेत शुद्ध करता है। कि ब्रह्मा के मानस पुत्र मध्य में एक में मरीचि नाम का एक पुत्र था जो मन से उत्पन्न हुआ, तो मरीचि के साथ से मरीचि के मार्फत ऋषि कश्यप का जन्म हुआ, और कश्यप ऋषि बहुत धार्मिक थे, और कश्यप ऋषि के 13 श्रीमती थे, उनके पत्नी 13 थे, क्योंकि दक्ष प्रजापति ने 13 बेटी के साथ में उनको शादी करा दिया, और 13 में दिति और दनु प्रमुख श्रीमती थे, और दनु के साथ से दानव उत्पन्न हो गए, दिति के गोद से देवता उत्पन्न हो गए। इसीलिए क्या है कि देवता और दानव का पिता एक ही है, कश्यप, माता अलग अलग है। तो वही दिति जो थी उसके वजह से सारा देवता उत्पन्न हो गए, और दानव के लिए जो दनु के संतान दानव के रूप में आ गए, और उसमें भी विप्रचित नाम का बड़ा भयंकर दानव था, उसके पुत्र दम्म हो गए, और दम्म को भी संतान नहीं था, इसलिए वो क्या है कि आराधना में, योग में, तप में लगा, तप करते करते करते करते ब्रह्मा जी को आशीर्वाद मिला उसको कि संसार में कोई भी देवता उसको परास्त नहीं कर पाए, नहीं कर सके, ऐसा बेटा चाहिए। उसने बहुत भयंकर तप किया, घोर तप किया, तो वो तप करने के बाद में उसको शंखचूड़ नाम का एक बेटा मिला। तो वही बेटा के आधारित एक बहुत लंबा, बहुत पुराना, बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे अमृत वाणी कथा है, जो कथा आज से हजारों साल पहले सत्ययुग में भी सुनाई जाता था, अभी भी हम भाग्यशाली है कि इस तीर्थ स्थान में बैठ के सुनने को मौका मिल रहा है। तो उसमें सिर्फ शंखपुर का कहानी नहीं आता है, अभी भारतवर्ष में वैज्ञानिक लोग ने क्या क्या अन्वेषण किया, आविष्कार किया, तो उसमें ये भी प्रमाणित हो चुका है। तो इसीलिए ये प्रमाणित हो चुका, प्रमाणित विषय है, तो वही चीज अभी आगे बढ़ता है कि शंखचूर अपने जीवन को कैसा आगे लेकर जाता है, वो भयंकर दानव कैसा संसार को त्राहिमाम त्राहिमाम बनाता है, तो वही चीज अब विस्तार में कहते हैं। आप सुनते रहिए, जय बोले श्री भोले बाबा की, विष्णु भगवान की जय। सो दम्ब डिड नॉट हैव एनी सन, सो दम्ब वाज द सन ऑफ विप्रचित एंड दम्ब डिमोन, and he went to the jungle and he meditated for a longer times, and hundreds of years he meditated. After meditate, that Brahma is pleased, and after Brahma pleasing, so he came and then blessed him, and he told, well, I need a brave son, very brave son,
who cannot defeat it by any

इस दुनिया में पतिव्रता धर्म और पत्नी धर्म सबसे शक्तिशाली है, जो विष्णु भगवान और लक्ष्मी और जो पार्वती और शिव, और ये आप देख सकते हैं शंखचूड़ और तुलसी में भी। जब इनका पत्नी व्रत धर्म, जो पति व्रत धर्म नष्ट हो गया, तो शंखचूड़ दानव भी कमजोर होने लगा। जय बोलिए भगवान नारायण की जय। तो इसका अर्थ क्या है कि जब आपको घर में पति पत्नी के बीच मेल है, तो दुनिया कोई नहीं बिगाड़ सकता है आपको, ना तो पड़ोसी बिगाड़ सकता है, ना तो भाई, ना तो कोई। जब पति पत्नी में कलह पैदा हो गया तो शक्ति छीन लेता है, तो घर फिर टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, और जितने भी आप देखावटी के लिए पति पत्नी हो जाते हैं, और पति के दुश्मन पत्नी ही हो जाती है। तो इसलिए बोलते हैं कि एक आदमी ने पूछा कि पत्नी और दुश्मन में क्या फर्क है, तो वो आदमी ने बताया कि दुश्मन दूर में रहता है और पत्नी साथ में सोती है, लेकिन दोनों दुश्मन है। तो मतलब जिसको साथ में प्यार नहीं है, अच्छा नहीं है, तो ये शत्रु के रहता होता है। इसीलिए क्या है कि जब मिलन होता है वो शक्ति बन जाता है। तो विष्णु ने भी वो शक्ति छीन लिया तुलसी को। तुलसी बहुत गुस्सा में आ गई जब पता चला कि ये विष्णु तो छल करके मेरा धर्म को लूटने के लिए आया, तो आप ऐसा पाप करने के लिए आया तो मैं श्राप देता हूं। तो उसने श्राप देने से पहले विष्णु ने बोला कि तुलसी, इससे उपाय कुछ भी नहीं था, क्योंकि आपके पति दानव ने सारे संसार में क्या किया कि परास्त कर दिया, देवता के लिए कुछ जगह ही नहीं है, इसलिए क्या है कि मैंने ऐसा करना पड़ा, माफ दीजिए। तो तुलसी ने क्या किया, श्राप कर दिया, श्राप दे दिया। श्राप देने के बाद में क्या श्राप दिया, पाषाण होके रहना पड़े, दैट मीन्स तो यू नीड टू बी ए स्टोन, तो आप पत्थर होकर रहना पड़े। तो पत्थर होकर रहे, तो उसी के श्राप से विष्णु भगवान शालिग्राम होकर रहे, इसलिए शालिग्राम को हम क्या है कि विष्णु भगवान के प्रतीक माना जाता है। तो उसी समय में जब श्राप देते समय में शिव जी आ गए, और भोले भाले शिव जी ने क्या है तुलसी को समझाया, तुलसी ये आपका कुछ भी दोष नहीं था, लेकिन क्या है कि धर्म रक्षा के लिए विष्णु ने भी ये किया है, इसलिए आप अब क्या करो कि कहीं कोई परपुरुष से जाने से शरीर क्या है कि अपवित्र होता है, लेकिन मन नहीं हो सकता है, आपको मन नहीं था, आपको मन से नहीं किया है, इसलिए क्षम्य है। इसलिए कभी कभी क्या होता है तो गुंडे लोग आके रेप कर देते हैं, उसका मन नहीं रहता है, लेकिन शरीर तो अपवित्र हो गया लेकिन मन नहीं रहता है, तो मन को हम माना जाता है, स्वीकार कर लेते हैं। तो फिर भगवान भोले ने भी वही किया कि आपका शरीर त्याग कर दो, उसने शरीर त्याग कर दिया, वही त्यागा हुआ शरीर गंडकी बनकर बग रही है अभी, सत्य युग से अभी तक गंडकी वही तुलसी का शरीर था, और गंडकी में ही शालिग्राम मिलता है, गंडकी नेपाल में पड़ता है, नेपाल के पोखरा के नजदीक मुक्ति क्षेत्र धाम है, वही धाम से गंडकी नदी बहती है, वो गंडकी के शिविर में शालिग्राम मिल जाता है, और शालिग्राम के अंदर में आप तोड़ के देखो तो वहां पे चक्र सुदर्शन चक्र दिखाई देता है विष्णु का, इसलिए ये कोई बनी बनाओ बात नहीं है, आप खुद जाके अभी देख सकते हैं, कलिकाल में कलिकाल का देवता साक्षात आप देख सकते हैं शालिग्राम को, और शालिग्राम के अंदर चक्र देख सकते हैं। अगर कोई भी शालिग्राम आने वाला नदी गंडकी में जाके, नेपाल के गंडकी में जाके स्नान करेगा, तो वो पुराण में लिखा है आपको 100 योनि तक आपको धर्मात्मा बनकर रहने का आशीर्वाद मिलेगा, और को पाप सारा छूट जाएगा। तो इसीलिए उस समय से तुलसी और भगवान विष्णु साथ में रहने लगे, और शिवजी ने बोला था कि तुलसी आप अब संदेह नहीं करो, भगवान विष्णु को स्वीकार करो, आप भी वैकुंठ चलो, और तुलसी ने बोला कि मेरा सारे समय में मेरा पूजा होना चाहिए, चलो ठीक है, वही आशीर्वाद मिला। तो आज तक भी हम तुलसी को पूजा करते हैं, विष्णु भगवान के साथ में रखते हैं, और तुलसी आपको खान पान में रखे तो क्या हो जाता है, वो आपको दवाई हो जाता है, आयुर्वेद का औषधि है, दवाई है तुलसी, आपको कैंसर से लेकर सारा रोग को निवारण करता है तुलसी, घर घर में राखे तुलसी ऑक्सीजन देता है, तुलसी आयुर्वर्धक है, तुलसी क्या है कि आरोग्य देता है, इसीलिए तुलसी चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, सिख हो, सबके लिए समान अवसर समान लाभ देता है, तो सबके घर में तुलसी होना चाहिए। तुलसी पूजा करे नहीं करे फिर भी लाभ देती है, पूजा करे तो विष्णु भगवान खुश हो जाते हैं, आपको पाप भी नष्ट हो जाता है, आपको आरोग्य प्राप्त हो जाता है। तो उस दिन से तुलसी और शिव जी साथ में रहने लगे। जय बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। सो वी गोइंग टू चैंट नारायण, कृष्ण भगवान के क्या है, कृष्ण भगवान के आशीर्वाद से, कृष्ण कवच से, वजह से ये युद्ध में शंखचूड़ा जो शंखचूड़ दानव नहीं हारा था, अब क्या है शंखचूड़ दानव हर गया और कृष्ण कवच विष्णु के पास में रह गया। कृष्ण इतने शक्तिशाली पहले भी थे, अभी भी है, और कवच शक्तिशाली है। तो कृष्ण भगवान को जय बोलो, जय बोले कृष्ण भगवान की जय श्री।

0: and some other country, Canada. Nowadays, the gardener, they are growing the peepal tree, banyan tree, and which is very expensive tree. It takes 1,000 to 2,000 for one plant. So what a valuable now, isn't it? So better you can go and darshan here. You are in India. While you are in India, you can see and feel the that's a tree, the people tree. Jai boliye Narayan Bhagwan ki jai. Isliye people ke rukh mein dhyan karne se, people ke rukh ke niche baith ke dhyan karne se, swas prasasan mein aashwasan to yahi hai. Aur people ke kya hai? People mein Brahma, Vishnu, Mahesh ka bhi baas hai. इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध भगवान जो नेपाल में जन्म हुआ था उनका उनकी उन्होंने भी ध्यान किया, ध्यानस्थ करके उसी बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्ञा प्राप्ति किया। कब प्राप्त किया? वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में जन्म, वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में महानिर्माण, और वैशाख शुक्ल पूर्णिमा के दिन में ज्ञान प्राप्ति होने वाला ऋषि मुनि वही थे कि जो नेपाल के गौतम बुद्ध जो बोध गया में आए आकर मेडिटेशन किया था। तो ऐसे करके रामतीर्थ स्वामी भी वही पूर्णिमा के दिन में उनको जन्म हुआ था, पूर्णिमा के दिन में ही उनका मृत्यु हुआ था। इसलिए कि वैशाख पूर्णिमा वैसे भी अस्पिस से उसमें भी जो पीपल के वृक्ष के नीचे आप कोई भी काम करे तो होता है। इसलिए फिर दूसरा चीज है, जब भी शनि संकटा का जो आपको समस्या है तो ज्योतिष विज्ञान भी वही आपको शिकायत करता है कि शनिवार के दिन में जाके पीपल के पेड़ में पानी गिराओ। तो पानी के कमी होने से वो आपको धर्म नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जब आप सुबह शनिवार के दिन में पीपल के वृक्ष के नीचे जाएंगे तो आपको सारा नेगेटिविटी हो, स्ट्रेस हो, और जो प्लैनेट से आया हुआ कोई भी नेगेटिव वाइब हो दूर हो जाता है और आपको अच्छे ऑक्सीजन मिल जाता है। इसीलिए आपको ग्रह पीड़ा से आप मुक्त हो जाते हैं। जय बोलिए पीपल भगवान की। सो इट इज सेइंग दैट इन एस्ट्रोलॉजी आल्सो, इफ यू आर सफरिंग सम प्लैनेटरी दैट इल इफेक्ट, देन यू कैन गो अंडर द बनियन ट्री on Saturday and offer water. It is saying that the remedy, one of the remedy of the Saturn planets to remove to Graha Pida. So why it is fruitful? Because when you go on Saturday, that Saturday morning, it is saying there is the God is residing in the trees, on the branches. If you don't believe, if you don't want to believe, that's fine. But still you will get the same benefit that the oxygen will come there early in the morning, the great oxygen of the peoples. And also, if you pour the water, that's good. You are giving the watering the plant. And that's also dharma, obviously. And definitely you will be protected. So that's why the everything is and everything that has got science and it is practicing nowadays heavily and widely. Jai boliye people Bhagwan ki.
1: Jai.
0: Now we'll have one bhajan. And we'll go continuously. We finished many chapters today, so which is important also. We will not have time some other time to read in detail. There is a long verses, and also it need to be, I'm trying to translate instantly all the Sanskrit slokas and these verses. Okay, so we'll go for bhajans. Hari Om.
2: भगवान की जय। श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्रीदेव पुरुष महादेव की
0: जय।
2: श्री माधव कृष्ण भगवान की
0: जय।
2: विष्णु गुरु महामंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वर।

0: Омбале, Срі Срідіп Нарем Багване Кіджє, Срі Срідева Пуріша Махадева Кіджє, Срі Срімадав Крішна Багване Кіджє, Вишва Гуру Махамандалешвар Парамха Срі Свами Махешвара Нанджі Гурудева Кіджє.
1: Jai Bole Bhoye Baba Ki. So in Shiva Puran, whatever talks, the Swastani Puran also the same thing as I mentioned before. It teaches us how we can remain all the time in a deep spiritual value. The life is very short and we came in this universe that for a short life. So it is saying that in sky, whatever light gives by the star, that much wide place it can see. That's why in our life also, whatever divine divinity or purity we can maintain, that much purity we can carry with us. So every stories, every philosophy, every that the information teaches us these things here. So that's why whatever you mean, the change your vision, visuality, to see Bhapuran, हमारे लिए और सारे वेदादि वेद क्या करता है कि हमारे लिए जीवन कैसा सरल बनाना है और शिव जी की तरह कैसा रहना है. और शिव जी ने बोला है कि मैं कल्प कल्प में आवश्यकता के अनुसार कभी ब्रह्मा बन के, कभी विष्णु बन के और कभी शिव बन के मैं क्या है कि संसार को चलाता हूँ. तो कभी कभी मेरा भूमिका रहता है ब्रह्मा का, कभी विष्णु का, कभी क्या है तो कभी रहता है शिव का. इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश में कोई विभेद नहीं है और शिव से विष्णु बड़ा, विष्णु से ये बड़ा वो हो ही नहीं सकता. ब्रह्म एक ही है. तो इसलिए ब्रह्म एक है तो सबसे बड़ा शैव कौन है कि नारायण है, सबसे बड़ा वैष्णव कौन है कि फिर शिव जी है. वो तो हमने बारंबार बोलते ही आया है. सारे शास्त्रों, ऋषि मुनि, संतगण, महात्मा सारे समय समय में उपदेश देते आया है इसके लिए. फिर भी जब संदेह रहता है तो संदेह क्या है कि इस कार्य बिगाड़ देता है. संदेह ही क्या है कि धर्म का नुकसान करने वाला है. तो इसलिए संशय आत्म विनश्यति ही, तो किसने बोला है तो भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने बोला है कि तो संशय करोगे तो उसमें क्या होता है कि आत्म द्रविड़ हो जाता है, मन बिगड़ जाता है. सो व्हाट एवर यू फॉलो ट्रस्ट, व्हेन यू ट्रस्ट देन डेफिनेटली इट विल हेल्पफुल फॉर यू. इट इज सेइंग दैट we always celebrate Hanuman Jayanti, isn't it? So Hanuman is a bhakta of Rama. We always celebrate Hanuman Jayanti. But in similarly, Arjun also the very close friends and bhakta also the Krishna. So why we cannot celebrate Arjun Jayanti? Because Hanuman is a devoted person. He never doubt. He never doubt. So he always respect and honor. There was no doubt for him. God exists or not. There is always he believe and trust. So that's why we celebrate the devotion of Hanuman. That's why we call Hanuman Jayanti. But do we celebrate Arjun Jayanti? No. Because Arjun also devotee. But he always doubt. He's asking, oh, what will happen? Oh, the Lord Krishna, I cannot fight. Oh, the Lord Krishna, you said meditate. But how can we meditate? And you said one time that go and marry and remain in a dharmacharya. This is a confusion. So I mean confused. So, and that's a continuously sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. So Bhagavad Gita chapter 18 verses 66. Sarva dharman parityajya mamikam saranam braja. Aham tvam sarva pape bhyo mukcha isyami maha sujaha. So Bhagavad Gita ke 18 अध्याय के 66 श्लोक में जो लिखा है वो भी क्या है कि सर्वधर्मान, मतलब कि कोई भी चीज आपका जो दानवीय चीज है, कोई भी असुर तत्व है, सबको छोड़ के एक निर्वृत्त होकर मानवीय धर्म, ब्रह्म धर्म में निर्लिप्त हो जाइए तो उसमें क्या है कि आपको बहुत से मुक्ति मिल जाएगा. इफ यू सरेंडर दैट चैप्टर 18 वर्सेस 66 भागवत गीता सेज इफ यू सरेंडर विदाउट एनी डाउट definitely you will go, you will cross the river. If you doubt, then it will not be. That's why it is saying that it increases faith also. And for the faith, many stories comes, many things comes. So that's why there is theories. One is, you remain happily without doing material gain, with balancing material gain, or it's like a charvak siddhanta, the charvak theory. The charvak theory says like, yavat jivet sukham jivet, rinam krivet, gritam pivet, vastri bhutasya dehasya punaragaman kutaha. That means, yavat jivet sukham jivet. As long as you live, live happily. Enjoy, drink, dance, and no matter you have debt or not, then effort ghee. Ghee means like nectar. Enjoy your life. But that Sarvak's theory is that said. But in spirituality, it says like, there is a great nectar. If you have the addiction of divine, you don't need to enjoy for wine. So in you can enjoy with divine. The divinity, spirituality is really good. So that's why it says like, trust and follow the Shiva Purans. It says like from Rudra Samhita to this, we can summarize, when we summarize that, the Tulasi's devotions and how can it helps this society to unite husband and wife, society and family to family. This is the one of the wonderful story. And secondly, we can learn this one, great devotion, deep devotion without any doubt. Where is doubt, cut it out and continuously you follow. And later on, finally, it is saying that the Brahma is Vishnu and Mahesh, the Trigona, proton, neutron and electron. They merge together whenever it necessary. And no matter whatever powerful demon, whatever the power you have got, one day that will be cessation. So that's why, that's the story from the Satya Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga to now it's a discontinue. This is the wonderful story we studied in Rudra Samhita. And almost we finished 43 chapters of this Rupta Samhita Panchama Yuddha Khanda, which is wonderful. And I think today we need to conclude this one. So, askeli aaj humne kya sun liya ki Rudra Samhita mein pehle se abhi tak kya hua ki Parvati ji ka devotion to humne sun liya tha. Aise karke जालंधर को कैसा विष्णु भगवान ने परास्त करने के लिए वृंदा को सतीत्व हरण करना पड़ा और सतीत्व हरण करने के बाद में उनका पति धर्म नष्ट हो गया. पति धर्म नष्ट होने के वजह से क्या है कि जालंधर दानव मर गया. इसलिए पति बीच पत्नी बीच के जो धर्म होता है वो बहुत शक्तिशाली रहता है. आप कहीं भी रहो जैसा भी रहो कि शंखचूड दानव के लिए भी कौन थी बलवान, तुलसी का व्रत था. तो ऐसे करके फिर शिव जी के लिए पार्वती थी और विष्णु भगवान के लिए लक्ष्मी, जालंधर के लिए वृंदा. जब तक उनको पतिव्रता धर्म रहा था तो सदा वो अमर रहे. इसलिए आज के सोसाइटी में, समाज में तुलसी का महत्व तो क्या है, आयुर्वेद के हिसाब से पीपल के महत्व तो के बारे में आज चर्चा किया है शिव पुराण के. अब इस समय में हमको साराम समय प्रस्तुत करने का समय आ गया. तो कल हमारे लिए बहुत अच्छा ऐसे ही प्रसंग आ जाएगा. आप लोग जरूर से आना सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक और शाम को चार बजे से लेकर छः बजे तक ये शिव पुराण महात्म्य हो जाता है. ये महात्म्य तीर्थ स्थान में बैठकर श्रवण करने का इसका महत्व तो अलग रहता है. आप कहीं भी हो तो इसके लिए आप क्या है कि याचना करके आ जाइए. शरीर मन तो पवित्र हो जाता है, जन्म जन्म के पाप भी दूर हो जाता है. तो इसीलिए तो शिव भगवान का दृष्टि उनके पवित्र सौर शब्द से हम इस्तेमाल करते रहे, जुड़ते रहे. जय बलिए सत्य सनातन धर्म की जय.

श्री श्री देव पुरुषा महादेव सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान अलकपुरी जी सिद्ध पीठ की सत्य सनातन धर्म। ओम शांति शांति शांति।

ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तस्मस्यादिलक्ष्यम एकम अनित्यम विमलचलम सर्वधि साक्षीभूतम्

देव नारायण भगवान की, देवेश्वर महादेव, अलखपुरी जी महादेव की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। ओम शांति शांति शांति।

भगवान की जय। श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज की जय। श्रीदीप नारायण भगवान की जय। विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेवा की जय। स्वामी अवतारपुरी जी महाराज की जय। श्री अलकपुरी जी सीधा पीठ परंपरा

नारायण भगवान की जय। श्री देव पुरुषा महादेव की जय। धरम सम्राट स्वामी मधवानंद जी भगवान की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी गुरु।

0: तस्मै श्रीगुरवे नमः
1: ज्ञानमूलं गुरुमूर्तिः पूज्यमूलं गुरुपदं
0: मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा ॐ दीप् ज्योति परब्रह्म दीपं सर्वे मोहनं दीपनं सजते सर्वं सन्ध्यादीपं सर्वं सत्यम् ॐ नमो प्रभुदीप विनाशी आपि ब्रह्माय आपि विष्णु आपो कैलाशिवासी आपो नारद आपो शारद आपो शे शुक्रासी

0: दिलीप नारायण
1: भगवान की
2: जय।
0: माता जी की
1: जय। देवपुरी भगवान की
2: जय।
1: हरिओम।

ओम श्री दीप नारायण भगवान की सदैव शर्मादेव की हिंदू धर्म समर्षि स्वामी माधवानंद जी सदगुरुदेव की श्वा गुरु मंडलेश्वर परम श्री स्वामी महेश्वरानंद जी गुरुदेव की श्री दीप नारायण भगवान की जय।

0: नारायण भगवान
1: की
0: जय। श्री देवेश्वर महादेव की जय। श्री स्वामी माधवानंदजी गुरुदेव की जय। विश्व गुरु महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंदजी गुरुदेव की जय।
2: श्री दीप नारायण भगवान की जय। श्री श्री देवपुरी जी महा

0: श्रीदीप नाम भगवान की जय, श्रीमदेवानंद जी भगवान की जय।
1: थैंक यू एंड टुमारो विल बी मोर ओके
2: जितना सीधा उदासी
1: प्लीज कम।
3: There's a very powerful prayer which we hardly ever sing.
2: Je jedna velice silná modlitba, kterou málo kdy zpíváme.
3: Shri Satguru Bhagavan ki arati. Shri Deep Narayan Bhagavan ki jai.

भगवान की जय। श्री माता वनंद होली गुरु जी श्री सत्ता गुरुदेव श्री दीप नारायण भगवान की जय।

That's it. So don't think that I will be now by my great wife, friend, hello, my dear, oh, my brother, hey, my sister, hey, my father, hey, my ma, or hey, my husband, and your wife. She said, but will not. And I said, no, you are kidding, but one day, फिर कहते मैं कहाँ जाऊँ मारी वो कटेगी ओ यस दैट्स व्हाई लाइफ बिकॉज वी आर द ह्यूमन वी शुड नो दैट दैट्स इट अदर्स दे नो दे हैव लर्न गॉड हैज गिवन एग्जैक्टली सो दिस वन सीड गोज इन अर्थ स्प्राउट्स इट्स कम्स अप फ्लावर्स एंड Then now very nice leaves, it will fall down, new will come again. The same thing like humans and this, everything. But more is to there. Patta tuta del se le gai pavana udai. Ab ke bichare kab mila. Pata kahan milega, kahan jayega. आज हम हैं सभी साथ में वी आर ऑल हियर एंड वी विल बी टू योर होप वी होप बट इट कैन बी दैट वन पर्सन इन अ नाइट वी विल बी नॉट एनी मोर देयर जीव पक्षी जाता है वो पक्षी पक्षी रे वो कहते हैं कि नहीं हरि ओम प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड ट्राई टू कैच हॉरिजेंट और हाउ टू गेट द हॉरिजेंट टुमारो आई विल टेल यू हरि ओम दीप नारायण भगवान की नाउ द बॉयज कम दे आर कमिंग द स्टूडेंट्स Oh.

0: come a little back. Thought of. मेरे पप्पी से आओ या मेरे पास में, अब दोनों एक साथ साथ रहो बेटा। हमारे मास्क निकाल दो। साइड करो स्लो। थैंक यू।
1: श्री दीप नारायण भगवान की जय। देवेश्वर महादेव की जय।
0: थोड़ा दूर है।
2: हिंदुम सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की जय।
1: विश्वगुरु महामंडलेश्वर परमहंस स्वामी महेश्वरानंद जी पुरी जी गुरुदेव की जय।
2: Without Guru, we cannot know Brahma, Vishnu, Mahesh. Actually, Guru is not only Brahma, Vishnu, Mahesh. Guru is also Par Brahma, Parameshwar. Om